0: पापा।
1: वो तो
0: क्यूट है ना?
1: अरे पहलवान है
0: पर तुमसे प्यार करती है।
1: हो नहीं सकता।
0: और तुम्हें भी उससे प्यार करना चाहिए।
1: हो नहीं सकता।
0: वो तुम्हें पकड़ने यही आ रही है।
1: ये हो नहीं सकता।
2: होनी को तो कुछ भी हो सकता है मेरे श्याम।

हमारी सभी सुनने वालों की सेवा में मेरे तरफ से हर एक को सादर नमस्कार और आदाब बरसों। यह है ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन रेडियो SBS का प्रोग्राम जो आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है। जो बीमार या लाचार है भगवान से तंदुरुस्त के लिए प्रार्थना या तो अल्लाह से दुआ किया जा रहा है उन सभी की दुख और गमी हमेशा के लिए दूर करने के लिए। जिन लोगों के घर पर खुशियां ही खुशियां है, सारी सालगिरह, विवाह संस्कार, जन्मदिन या तो प्यारा प्यारा बच्चा पैदा हुआ है, तहे दिल से बधाई और मुबारकबाद पेश किया जा रहा है रेडियो SBS का पूरा और पूरा टीम के तरफ से। मंगलवार का दिन है, 15 सितंबर का प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। आप सभी सुनने वालों को शुभ सुबह शुभ दिन पेश किया जा रहा है। आप सभी सुनने वालों को ये दिन लाख लाख बधाई हो, मुबारक हो रेडियो SBS का पूरा और पूरा टीम के तरफ से। घड़ी की ओर देखा जाए 7:00 प्रोग्राम में 3 व्यतीत हो चुका है। 3 ओवर सेवन। सभी इन्फॉर्मेशन के लिए इन्फो के लिए टेलीफोन नंबर है 03-265-65-60। स्टूडियो का टेलीफोन नंबर और रेडियो SBS का एप नंबर 03-262-66-11। वेबसाइट होता है radio.sbs.nl। उसी वेबसाइट के जरिए आप हमारा प्रोग्राम को सुन सकते हैं अपना मोबाइल टेलीफोन टैबलेट आईपैड कंप्यूटर के जरिए। उसी वेबसाइट के जरिए भी आप मेल कर सकते हैं और रेडियो SBS का ऐप पर भी आप ऐप कर सकते हैं। मैं हूँ

सुबह सुबह लो शिव का नाम हरिहरन की आवाज में सुंदर सा भजन आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस बीच की गई रेडियो SBS की जरिए प्रोग्राम भजन यात्रा आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है और इस प्रोग्राम को आप जरूर और जरूर सुनते ही रहना। मंगलवार का दिन है, सभी सुनने वालों को एक बार फिर से शुभ सुबह शुभ दिन जहां जहां पर भी आप सभी प्रोग्राम को सुनते हैं। स्टूडियो का टेलीफोन नंबर और हमारा रेडियो SBS का एप नंबर 030-22-66-66-11 इसी तार की नंबर पर आप स्टूडियो की ओर तार कर सकते हैं और हमारा रेडियो SBS का एप पर आप एप कर सकते हैं। प्रोग्राम भजन यात्रा में हम आपको ले चलते हैं ये सुंदर भजन की ओर। लखबीर सिंह लाखा की आवाज में बस पेश किया जा रहा है आप सभी सुनने वालों की सेवा में। मंगलवार का दिन है, श्री हनुमान बाबा जी का दिन, तो ये सुंदर सा भजन आप सभी भक्त प्राणियों के लिए। जबकि 7:12 मिनट बैठी

सुंदर सा भजन लखबीर सिंह लाखा की आवाज में आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गई रेडियो SBS के जरिए। प्रोग्राम भजन यात्रा पेश किया जा रहा है। ये प्रोग्राम हर सुबह आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है, सोमवार से लेकर के शुक्रवार तक सुबह 7 बजे से लेकर के और सुबह 8 बजे तक, हर वीकेंड शनिवार और रविवार सुबह 8 बजे से लेकर के और 9 बजे तक ये प्रोग्राम को आप सुन सकते हैं। चले प्रोग्राम में एक सुंदर सा भजन आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है रेडियो SBS की जरिए। आज जबकि मंगलवार का दिन है, सुबह की ये प्रोग्राम पेश किया जा रहा है।

0: सुंदर सा भजन आप सभी सुनने वालों के लिए, सभी भक्त बरानियों के लिए बस पेश की गई है रेडियो SBS की सरिया। अभी आपने सुना
1: Dit is Jos Tuinstra met de hoofdpunten van het radionieuws op Radio SBS. Door een grote storing op meerdere plekken in Midden-Nederland rijden vanmorgen veel treinen niet of met forse vertraging. ProRail spreekt van een probleem dat het hele treinverkeer in Midden- en Noord-Nederland raakt. De oudste dochter van de overleden Rotterdammer Alfredo Gulu doet aangifte tegen de agenten die hem zaterdag arresteerden en waarbij hij overleed. De drie personen die bij de vliegtuigcrash in Duitsland net over de grens bij Roermond om het leven kwamen, zijn drie Nederlanders. Navolgevechtsvliegtuigen hebben boven Litouwen een drone neergeschoten, meldt de Litouwse president Noseda. Het weer in het noorden en westen is bewolkt, in het zuiden en oosten schijnt de zon. Vanmiddag wordt het tussen 20 graden aan de noordwestkust en 28 graden in het zuidoosten. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Radio SBS.
2: Nu de verkeersinformatie op Radio SBS.
3: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden.
2: Tot zover de verkeersinformatie op Radio SBS.
0: Radio SBS का प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। प्रोग्राम भजन यात्रा आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है और इस प्रोग्राम को आप जरूर सुनते ही रहना। सभी सुनने वालों जो स्टूडियो की ओर तार किया है, तार कर रहे हैं और सभी जो रेडियो SBS का ऐप पर ऐप किया है, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग कहा है, आप सभी सुनने वालों को एक शुभ सुबह, शुभ दिन। हमारी कुछ सुनने वालों है जो तार किया है, तैयारियां कर रहे हैं अभी नौकरी की ओर, काम की ओर जाने के लिए, सभी को शुभ दिन पेश किया जा रहा है। बच्चों भी तैयारियां कर रहे हैं अभी स्कूल की ओर, पाठशाला की ओर जाने के लिए, सभी को भी शुभ दिन पेश किया जा रहा है। चलिए प्रोग्राम में अब की बार ये सुंदर सा भजन आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है।

सुंदर सा भजन प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। प्रोग्राम भजन यात्रा आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। सुनने वालों, रेडियो SBS का वेबसाइट radio.sbs.nl, उसी वेबसाइट पर मौसमी समाचार होता है और उसी वेबसाइट पर रोजाना अपना डाक हॉरोस्कोप यानी कि ज्योतिष शास्त्र आप जाकर देख सकते हैं और तरह तरह की खबरें इसी वेबसाइट पर बस होता है। प्रोग्राम भजन यात्रा में हम आपको ले चलेंगे अनुराधा पोर्टवल जी की आवाज में ये सुंदर सा भजन।

सुंदर से सुंदर भजन आज की सुबह की प्रोग्राम में बस पेश किया जा रहा है। प्रोग्राम भजन यात्रा आप सुन रहे हैं अनुराधा पोटवाल जी की आवाज में। ये सुंदर सा भजन अभी आपने सुना। अब की बार एक भजन आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। ये भजन भी काफी सुंदर सा भजन है जो पेश किया जा रहा है रेडियो SBS के जरिए।

0: राम।
1: रेडियो SBS के जरिए ये सुंदर सा भजन आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गए प्रोग्राम भजन यात्रा पेश किया जा रहा है और इस प्रोग्राम को आप जरूर सुनते ही रहना। आज सुबह काफी तार अंदर आया है सुनने वालों, हमारा रेडियो SBS का ऐप के जरिए भी तार किया है, स्टूडियो का तार पर भी तार किया है। सभी को शुक्रिया धन्यवाद कि आप सभी प्रोग्राम सुनते हैं। चले प्रोग्राम में श्री हनुमान चालीसा की ओर हम आपको ले चलते हैं, जो आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है। सुंदर सा श्री हनुमान चालीसा आप सुनते ही रहना राकेश काला जी की आवाज में।

हनुमान जी का चालीसा बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी सुनने वालों की सेवा में। सुनने वालों, घड़ी की ओर देखा जाए 8 मिनट बाकी है सुबह 8 बजे में। चले यहां से प्रोग्राम में आरती भजन की ओर हम आपको ले चलते हैं। अनूप जलोता जी की आवाज में एक सुंदर सा श्री हनुमान जी की आरती आप सुनेंगे और पेश किया जा रहा है रेडियो SBS का पूरा और पूरा टीम के तरफ से, हमारे तरफ से, हमारा पूरा परिवार के तरफ से भी आप सभी सुनने वालों के लिए, सभी भक्त प्राणियों के लिए, उन सभी के लिए जो बीमार या लाचार है, सभी दुखित प्राणियों के लिए, सभी बच्चों के लिए, सभी जो आज नौकरी करने वाले हैं, काम करने वाले हैं, सभी को शुभ दिन पेश किया जा रहा है। हमारे सभी सुनने वालों जो दुनिया के कोने कोने में रेडियो SBS का प्रोग्राम को सुनते हैं और खासतौर पर सभी सुनने वालों जो रेडियो SBS का ऐप पर भी ऐप किया है, उनके लिए, उनके पूरा परिवार के लिए, हर एक के लिए शुभ सुबह शुभ दिन के साथ ये सुंदर सा आरती भजन पेश किया जा रहा है। अनूप जलोटा जी की आवाज में जरूर आप सुनते ही रहना।

हर दिल जो प्यार करेगा गाना जो प्रोग्राम में पेश की गए उदित नारायण और अलका जी की आवाज में आज की सुबह के प्रोग्राम में जो पेश की गए सुनने वालों मंगलवार का दिन 15 तारीख सितंबर का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। सभी सुनने वालों को एक बार फिर से शुभ सुबह शुभ दिन जहां जहां पर भी आप सभी प्रोग्राम को सुनते हैं। और आज भी प्रिंसेस दाख है, मंगलवार 15 तारीख सितंबर है, प्रिंसेस दाख का दिन। और आज का मौसम भी खूबसूरत सुहाना मौसम होने वाले है, धूप ही धूप का मौसम और गर्मी सा मौसम होने वाले है। तो रेडियो SBS का प्रोग्राम जरूर आप सुनते ही रहना जहां जहां पर भी आप सभी इस वक्त प्रोग्राम को सुनते हैं। श्रेया घोषाल एंड सोनू निगम। आज बजकर प्रोग्राम में 12 मिनट वैधित हो चुका है। हमारी खुद सुनने वालों इस वक्त रास्ते पर है, फिल्म है और अपना डे या बे प्लस रेडियो की जरिए मोटर कार में प्रोग्राम को सुनते हैं।

रिया जी की आवाज में गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई रेडियो SBS की जरिए। टेम्स ड्राइव 237 शहर उत्तराखंड से ये प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है।

रेडियो SBS के जरिए आज की सुबह के प्रोग्राम में खूबसूरत नगमे पेश किया जा रहा है, द बेस्ट बॉलीवुड हिट्स रेडियो SBS के जरिए संगीत भरी स्टेशन का प्रोग्राम ये है।

और रेडियो वेव्स में इसके जरिए काफी प्यार भरी गाना प्रोग्राम में पेश की गई है। रेडियो एस बी एस के जरिए संगीत भरी स्टेशन का प्रोग्राम आप सुन रहे हैं। रेडियो एस बी एस का प्रोग्राम आप सुनते ही रहना, हमेशा द बेस्ट बॉलीवुड हिट्स आपके लिए। और सुनने वालों, आपको मालूम होना चाहिए रेडियो एस बी एस का वेबसाइट पर रोजाना आपका ज्योतिष शास्त्र यानी कि डक हॉरोस्कोप भी होता है। जरूर अपना मोबाइल टेलीफोन पर आप जाइए रेडियो एसबीएस का वेबसाइट पर radioSBS.NL। उसी वेबसाइट के जरिए प्रोग्राम भी आप सुन सकते हैं अपना मोबाइल के जरिए, और मौसमी समाचार भी आप देख सकते हैं और अपना डक हॉरोस्कोप। और हर एक घंटे पर आपके लिए न्यूज पेश किया जा रहा है, रिक्लाम के साथ, मौसमी समाचार के साथ न्यूज एंड अपीलिंग फॉर केयर्स इंफॉर्मेशन कि हॉलैंड के अंदर में कहां कहां पर लंबी ट्रैफिक, लंबी फीलर होते हैं।

0: सोनू निगम एंड अलका जी की आवाज में ये गाना बस पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। 8:08 स्टूडियो टाइट हो चुका है।
1: मेरी सांसों में तुम
0: कुमार सानू और आशा जी की आवाज में एक गाना पेश किया जा रहा है, फिल्म का नाम

रेडियो SBS की जरिए आशा भोसले एंड कुमार सानू की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी सुनने वालों की सेवा में। सुनने वालों अभी तकरीबन 9 बजे से पुरानी फिल्में संगीतों का प्रोग्राम पेश किया जाएगी। आप सभी सुनने वालों को खबर किया जा रहा है सोमवार 15 नवंबर उदित नारायण और आदित्य नारायण का लाइव कॉन्सर्ट भी होने वाले हैं रोटरडम आहोई RTM स्टेज में। अपना टिकट के लिए जरूर आप इस वेबसाइट पर जाइए i-tickets.com। टिकट इन दिनों काफी जोर तोर से बिक रहा है तो जल्द से जल्द अपना टिकट आप खरीदिए। रागा इवेंट्स के जरिए ये कॉन्सर्ट लाया जा रहा है तो अपना टिकट के लिए i-tickets.com वेबसाइट पर आप जाइए। चलिए प्रोग्राम में एक गाना आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है उदित नारायण की आवाज में। चांद सा रोशन चेहरा फिल्म का नाम है, सॉन्ग बाय उदित नारायण। वो दिन याद कर लो सनम, उदित नारायण एंड आदित्य नारायण बाप और बेटे का कमाल आप देखिए। सोमवार 15 नवंबर रोटरडम आहोई जहां पर उदित नारायण और आदित्य नारायण का लाइव कॉन्सर्ट भी होगा।

जान सा रोशन चेहरा, उसी फिल्म का गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई है और खासतौर पर उदित नारायण की आवाज में ये गाना भी आपने सुना जो प्रोग्राम में पेश की गई है। उदित नारायण और आदित्य नारायण का लाइव कॉन्सर्ट सोमवार 15 नवंबर पेश होने वाले हैं और वो भी रोटरडम आहोई में रागा इवेंट्स ला रहा है ये जबरदस्त कॉन्सर्ट। चले उदित नारायण के आवाज में एक और खूबसूरत गाना फ्रॉम द मूवी दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे।

और रेडियो SBS के जरिए उदित नारायण की आवाज में ये गाना पेश की गए, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, उसी फिल्म का गाना भी आपने सुना जो आज की प्रोग्राम में पेश की गए रेडियो SBS के जरिए। सुनने वालों चलिए गाना और होगा उदित नारायण के आवाज में, उसके बाद हम आपको ले चलेंगे रिक्लाम न्यूज मौसमी समाचार और फकीर से इन्फॉर्मेशन की ओर। उसके बाद आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जाएगा पुरानी फिल्में संगीतों का प्रोग्राम, तो जरूर जरूर आप सुनते ही रहना। गाना जो पेश किया जा रहा है प्रोग्राम में खासतौर पर

प्रोग्राम में एक मिनट व्यधि हो चुका है। शुद्ध बोलो आज मंगलवार का दिन 15 तारीख सितंबर का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। सभी को एक शुभ सुबह शुभ दिन। बाहर का मौसम की ओर देखा जाए धूप ही धूप का मौसम है और आज मंगलवार हॉलैंड देश के अंदर प्रिंसेस डे है।

के बाहर देश विदेश में दुनिया की कोने कोने में सुनने वालों बस ये प्रोग्राम को सुनते हैं। हर एक को खबर कीजिए ताकि हर एक इस प्रोग्राम को सुने। स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 9302266611 और इसी तारगी नंबर पर आप हमारा रेडियो SBS का ऐप पर भी आप ऐप कर सकते हैं। तो चले यहां से पुरानी फिल्में संगीतों का प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। सबसे पहले गर्मा गर्म कॉफी चाय के साथ आप सभी को स्वागत किया जा रहा है। चले प्रोग्राम में पहला गाना कंचन की आवाज में पेश किया जा रहा है। फिल्म का नाम रफू चक्कर, उसी फिल्म का ये गीत आप सुनते ही रहना। रफू चक्कर फिल्म का नाम 1957 तक का फिल्म है, उसी साल में ये फिल्म रिलीज किया गया है। 1975 1957 में गाना कबूल है ए जमाने, सॉन्ग बाय कंचन।

फिल्म राफू चक्कर, उसी फिल्म का गाना बस कंचन की आवाज में पेश की गई गाना का बोल ऐ ज़माने। आशा करो मीठे की ये गाना आप सभी ने सुना और काफी पसंद किया है। पुरानी फिल्में संगीतों का प्रोग्राम आज मंगलवार 15 तारीख सितंबर का पेश किया जा रहा है, जबकि घड़ी की ओर देखा जाए 9:07 व्यतीत हो चुका है और बाहर की ओर देखा जाए धूप ही धूप निकला हुआ है। आपको मालूम होना चाहिए डीएबे प्लस रेडियो के जरिए भी ये प्रोग्राम सुनाई देता है। इन दिनों काफी सुनने वालों होते हैं जो मिडर नीदरलैंड में और प्रोविंसी साउथ हॉलैंड में डीएबे प्लस रेडियो के जरिए हमारा प्रोग्राम को फॉलो कर रहे हैं। अच्छी आवाज में, क्वालिटी साउंड में ये प्रोग्राम जो हमेशा आपके लिए पेश किया जा रहा है रेडियो SBS का। वैसे काफी सुनने वालों हमेशा कॉम्प्लीमेंट्स देते हैं, ये रेडियो SBS, रेडियो SBS का साउंड बेस्ट साउंड होते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद कि आप सभी कॉम्प्लीमेंट्स देते हैं, हमारा साथ भी देते हैं। और सभी सुनने वालों जो रेडियो SBS का ऐप पर है, ऐप तो जोर तोर से अंदर आते हैं, तार भी आते हैं, सभी को शुक्रिया धन्यवाद कि आप सभी हमारा साथ देते हैं हमारा रेडियो SBS का ऐप भी जरिए। मोहम्मद रफी और लता जी की आवाज में गाना पेश किया जा रहा है, फिल्म का नाम भाभी, 1957 का फिल्म है, 1957 का फिल्म का नाम भाभी, ब्लैक एंड व्हाइट मूवी, मोहम्मद रफी और

पुरानी फिल्म भाभी का गीत पेश की गए मोहम्मद रफी और खास तौर पर लता जी की आवाज में। ये गाना भी आपने सुना। और 1957 का खास फिल्म का गीत अभी आपने सुना जो प्रोग्राम में पेश की गए। बलराज सानी, नंदा, जगदीप और ओम प्रकाश का फिल्म है फिल्म भाभी जो आज की प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए एक फिल्म का गीत की ओर हम आपको ले चलते हैं। संगीत भरी स्टेशन है द बेस्ट बॉलीवुड हिट्स हमेशा आपके लिए रेडियो SBS की जरिए। मुकेश और लता होगा प्रोग्राम में, धरती कहे पुकार के फिल्म का नाम।

पति कहे पुकार के फिल्म का गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई, जितेंद्र और नंदा का फिल्म धरती कहे पुकार के। मुकेश और लता जी की आवाज में ये खूबसूरत गाना भी आपने सुना जो आज की ये प्रोग्राम में पेश की गई। आमस्टरडाम शहर की रहने वाली श्रीमती बेया भी हमारा प्रोग्राम इस वक्त सुनते हैं, कॉम्प्लीमेंट्स दिया है। ये सब पुरानी नखमे पर जो आज की प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है, वैसे कॉम्प्लीमेंट्स तो अंदर आते रहते हैं तार द्वारा हमारा रेडियो SBS का ऐप के जरिए। चले प्रोग्राम में फिल्म धरती, उसी फिल्म का एक गाना पेश किया जा रहा है। 1970 का फिल्म, 1954 तक का फिल्म है धरती। फिल्म में काम किया है राजेंद्र कुमार एंड वहदा रहमान, साथ ही साथ अजीत खान और चाली यानी कि राजेंद्र नाथ। फिल्म धरती 1954 तक का फिल्म है और उसी फिल्म में ये गाना लाया गया है मोहम्मद रफी और लता जी की आवाज में, ये अलबेली प्यार की राह है फ्रॉम द मूवी धरती। एक बड़ी ही खूबसूरत प्यार भरी गाना जो इस मौसम के साथ बहुत मिलता जुलता है। बाहर धूप निकला हुआ है और रेडियो SBS पर ये प्यार भरी गीत।

पुरानी फिल्म धरती, उसी फिल्म का गाना मोहम्मद रफी और लता जी की आवाज में आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गई है। खासतौर पर दलित रजिंदर कुमार और वहदा रहमान का फिल्म धरती, उसी फिल्म का गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई है। एक और फिल्म जिसमें राजेंद्र कुमार ने काम किया है, फिल्म साथी, उसी फिल्म में विजयंती माला और सिमी भी एक्टिंग किया है। संजीव कुमार इसी फिल्म में भी काम किया है। तो चलिए प्रोग्राम में लता जी की आवाज में फिल्म साथी का एक गाना पेश किया जा रहा है आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। और गाना का बोल है, ये कौन आया रोशन हो गई महफिल। 1968 का फिल्म, 1968 का फिल्म, लता जी की आवाज में द मूवी साथी। ये कौन आया है रोशन हो गई महफिल।

मंगलवार का दिन 15 तारीख सितंबर का प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है। रेडियो SBS का प्रोग्राम आप सुन रहे हैं। पुरानी फिल्में संगीतों का प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। हम आपको ले चलेंगे एक बार फिर से राजेंद्र कुमार का एक खास फिल्म की ओर। फिल्म का नाम ससुराल। ये फिल्म 1961 में रिलीज किया गया है, नहीं 1961 में। तो चले मिलकर एक गाना को सुनते हैं मोहम्मद रफी की आवाज में। गाना बड़ी खूबसूरत है, तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नजर ना लगे।

ससुराल फिल्म का गीत पेश की गई मोहम्मद रफी की आवाज में। ये गाना अभी आपने सुना द्री मनुटन। ओवर हाफ तीन हो चुका है और रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। एंटोफ शहर में हैंक भाई हैंक महावीर भी हमारा प्रोग्राम सुनते हैं। भाई हैंक महावीर शुभ दिन पेश किया जा रहा है। हम आशा उम्मीद रखते हैं जिस तरह से उत्तराखंड शहर में धूप निकला हुआ है, इसी तरह से एंटोफ शहर में धूप निकला हुआ है। खूबसूरत सुहाना दिन पेश किया जा रहा है और आप एक गाना सुनना चाहते हैं मुकेश जी की आवाज में, तो चले मिलकर सुनते हैं और साथ में मिलकर गुनगुनाते हैं मुकेश जी की आवाज में। फिल्म का नाम है दीवाना।

भाई हैंक महावीर, तुम्हारी भी जय जय, हमारी भी जय जय। दीवाना फिल्म का नाम था, मुकेश जी की आवाज में गाना बस पेश की गई। मांग करने वाला था एंटोफ शहर का रहने वाला हैंक महावीर। हैंक महावीर जो रेडियो SBS का प्रोग्राम हमेशा फॉलो कर रहे हैं, और आज की प्रोग्राम में ये खूबसूरत गाना मांग किया। राज कपूर का फिल्म है, फिल्म दीवाना। राज कपूर के साथ सलीम खान, सायरा बानो, कन्हैया लाल तो आप जानते हैं, मॉडर्न इंडिया में जो काम किया है, और वो भी लाला के नाम से, और खासतौर पर ललिता पावर और कमल कपूर फिल्म में काम किया। फिल्म का नाम दीवाना। इसी तरह से मुकेश जी की आवाज में ये गाना भी आपने सुना जो आज के प्रोग्राम में पेश की गई है। 1952 की ओर हम आपको ले चलते हैं। उसी साल में ये फिल्म रिलीज हुआ है, फिल्म का नाम बाउजू बाउरा। लता जी की आवाज में गाना आप सुनेंगे, बचपन की मोहब्बत को दिल से ना जुड़ा करना।

फिल्म का गीत अभी आपने सुना, 1952 का फिल्म, 1952 का खास फिल्म का गीत अभी आपने सुना। भारत भूषण और मीना कुमारी फिल्म में काम किया, फिल्म बौजू बौड़ा में। पुरानी फिल्मी संगीतों का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। एक गाना होगा प्रोग्राम में तलत महमूद और लता जी की आवाज में, तलत महमूद और लता जी की आवाज में गाना पेश होगा और गाना का बोल है, तू रूप की रानी चोरों का राजा, और फिल्म का नाम भी है रूप की रानी चोरों का राजा। 1961 का फिल्म है, 1963 का फिल्म, दलत महमूद और लता जी की आवाज में ये गाना। तू रूप की रानी मैं चोरों का राजा, ओल्ड इज गोल्ड, हाँ पुरानी गाने जो है हमेशा सुना होता है।

The man with the golden voice, Talat Mahmood aur Lata ji ki awaaz mein ye gana pesh ki gayi. Tu Roop ki Rani, tu main Choron ka Raja. Film ka naam Roop ki Rani Choron ka Raja. 1961 ka film hai. Film ka geet jo program mein pesh ki gayi hai. Aur khaas taur par ye film mein Devanand aur Mehda Rehman एक्टिंग किया है. रूप की रानी चोरों का राजा. रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है. बहुत सी सुनने वालों हम देख रहे हैं ऐप पर कॉम्प्लीमेंट्स ही कॉम्प्लीमेंट्स देते हैं. बहुत सी सुनने वालों भी प्रोग्राम सुनते हैं और इस प्रोग्राम चलाने में भी हमें बहुत मजा आता है. इसलिए कि हम देख रहे हैं दुनिया की कोने कोने में कितना ढेर सा सुनने वालों इस प्रोग्राम को फॉलो कर रहे हैं. हाँ, जहां मैं जाती हूं तुम वही चले आते हो. मन्ना डे एंड लता, फिल्म का नाम चोरी चोरी. जहां मैं जाती हूं बस तुम पीछे पीछे चले आते हो.

0: चोरी चोरी मेरे दिल में समाते हो, जहाँ मैं जाती हूँ तुम वहीं वहीं चले आते हो। मन्ना डे और लता जी की आवाज में ये गाना पेश की गई फिल्म चोरी चोरी। इस फिल्म में काम किया है राज कपूर, नरगिस, जॉनी वॉल्कर एंड परान। चोरी चोरी फिल्म का नाम 1956 का फिल्म जो आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश की गई, जहां मैं जाती हूं तुम वहीं चले आते हो। नहीं नहीं अभी नहीं, किशोर कुमार एंड आशा। अब की बार हम आपको ले चलते हैं फिल्म का नाम जवानी दीवानी।
1: आओ ना
0: किशोर एंड आशा। नहीं नहीं अभी नहीं, करो थोड़ी सी इंतजार।

दस बजकर प्रोग्राम में 2 मिनट व्यतीत हो चुका है। सुनने वालों, आज का मौसम खूबसूरत सुहाना मौसम है और बहुत सी सुनने वालों है इस मौसम में गर्मा गर्म कॉफी चाय के साथ हमारा रेडियो SBS का पुरानी फिल्मी संगीतों का प्रोग्राम को सुनते हैं। इंडिया भारत देश नोएडा में भी हमेशा की तरह आज भी अनुरेश और पूरा परिवार मिलकर रेडियो SBS का प्रोग्राम को सुनते हैं। इंडिया भारत देश नोएडा में वेलकम, स्वागत किया जा रहा है पुरानी फिल्मी संगीतों का प्रोग्राम में। शुभ दिन पेश किया जा रहा है और खास तौर पर एक गाना आप प्रोग्राम में सुनना चाहेंगे तो गाना पेश किया जा रहा है फ्रॉम द मूवी लाखों में एक, 1971 का फिल्म है। लता जी की आवाज में गाना पेश होगा चंदा ओ चंदा। चलिए मिलकर सुनते हैं, स्पेशल गाना मांग किया है इंडिया भारत देश नोएडा से

की आवाज में ये गाना बस पेश की गई चंदा ओ चंदा, लाखों में एक फिल्म का नाम, उसी फिल्म का गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई और मांग करने वाली थी, या कहिए मांग करने वाला था इंडिया भारत देश नोएडा के रहने वाला अनुरेश, अनुरेश ये खास गाना आज की प्रोग्राम में मांग किया आप सभी सुनने वालों के लिए रेडियो वेस्ट बेस की जरिए जो पेश की गई है, शुभ दिन पेश किया जा रहा है और रेडियो वेस्ट बेस का प्रोग्राम जरूर और जरूर सुनते ही रहना। फिल्म लाखों में एक, इस फिल्म में काम किया है महमूद प्राण और एक बार फिर से मॉडर्न इंडिया फिल्म का लाला जो है कन्हैया लाल फिल्म में काम किया और साथ में अरुणा ईरानी, एक बड़ी ही खूबसूरत फिल्म है फिल्म लाखों में एक। चलिए प्रोग्राम में हम आपको ले चलते हैं मोहम्मद रफी और लता जी की आवाज में गाना, फिल्म का नाम दुर्गा। कुछ कहने वाले था मगर हाँ भूल गया।

लता जी की आवाज में ये गाना पेश की गई फिल्म का नाम दुर्गा। खासतौर पर रजनीश खन्ना और हेमा मालिनी का फिल्म का नाम दुर्गा, उसी फिल्म से ये खूबसूरत प्यार भरी गाना आज के प्रोग्राम में पेश की गई। 10:13 वैदित हो चुका है, 3:15। सभी को नहीं खुद मोर्ख गुड मॉर्निंग कहा जा रहा है और रेडियो SBS का ये प्रोग्राम जरूर और जरूर सुनते ही रहना। पुरानी फिल्मी संगीतों का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। फोर्ट ब्यूरक में सोनिया भी हमारा प्रोग्राम सुनते हैं। सोनियान अनहेल खुद मोर्ख शुभ दिन पेश किया जा रहा है और रेडियो SBS का प्रोग्राम जरूर सुनते ही रहना। एक गाना आप सुनना चाहते हैं प्रोग्राम में लता जी की आवाज में, फिल्म का नाम आरजू, 1965 का फिल्म, 1965 का फिल्म है। फिल्म आरजू, साधना और राजेंद्र कुमार फिल्म में काम किया है। तो चले मिलकर सुनते हैं फोर्ट ब्यूरक शहर के रहने वाली सोनिया की मांगी हुई गाना।

1965 film Rajinder Kumar और खास तौर पर साधना का फिल्म एक्टिंग किया हुआ फिल्म और साधना के एक्टिंग किया हुआ गाना उस प्रोग्राम में पेश की गई। फोर्ट ब्यूरक की रहने वाली सोनिया की मांगी हुई गाना आज की प्रोग्राम में पेश की गई। आश्रो मीठे सोनिया गाना सुना और बेहद पसंद किया है। शुभ दिन पेश किया जा रहा है और रेडियो SBS का प्रोग्राम जरूर सुनते ही रहना। एक फिल्म की ओर हम आपको ले चलेंगे, 1973 का फिल्म लोवर फिल्म का नाम है। इस फिल्म में हमारा फेवरेट एक्टर धर्मेंद्र ने काम किया है, लेट हॉलीवुड टाइगर धर्मेंद्र और साथ में मुमताज फिल्म में काम किया है और मुमताज का एक्टिंग किया हुआ गाना आप सुनेंगे प्रोग्राम में लता जी की आवाज में। और मांग करने वाली है रोथडम शहर की रहने वाली गीता रॉय। गीता रॉय इस गाना को सुनना चाहते हैं आज की प्रोग्राम।

गुप्ता जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए लोवर फिल्म का नाम था मुमताज का एक्टिंग किया हुआ गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए और इस खास गीत को मांग करने वाली थे रोटरडम शहर की रहने वाली गीता रॉय की मांगी हुई गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी सुनने वालों की सेवा में। गीता रॉय शुभ दिन पेश किया जा रहा है और रेडियो SBS का प्रोग्राम इसी तरह से जरूर और जरूर सुनते ही रहना। रोटरडम छोड़कर हम चले जाते हैं डेन हाग शहर की ओर, वहां पर विनोद हमारा प्रोग्राम सुनते हैं और एक गाना मोहम्मद रफी की आवाज में मांग किया है, फिल्म का नाम नई रोशनी। नई रोशनी फिल्म का नाम मोहम्मद रफी, देनहाग शहर के रहने वाला विनोद का मांगी हुई गाना।

रेडियो SBS की सरिया फिल्म सरस्वती चंद्रा, उसी फिल्म का गाना पेश की गए मुकेश और लता जी की आवाज में। फिल्म सरस्वती चंद्रा में एक्टिंग किया है नूतन का एक्टिंग किया हुआ फिल्म है और गाना को मांग करने वाली थे। फूल तुम्हें भेजा है खत में, फूल नहीं ये मेरा दिल है, रोटरडम नोट की रहने वाली शीला की मांगी हुई गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। शीला शुभ दिन पेश किया जा रहा है। आज का मौसम भी खूबसूरत सुहाना मौसम है, मौसम का मजा जरूर लेते ही रहना। सुनने वालों आज प्रिंसियस डाक भी है, बस आज कोनिंग विलम अलेक्सेंडर आपको खबर करेंगे कि आने वाले दिनों में क्या क्या होने वाले हैं, हॉलैंडीज के अंदर में क्या महंगा होगा क्या सस्ता होगा। मेरा ख्याल से ज्यादा हिस्सा में चीज जो है सामान जो है महंगा होता जाएंगे। तो आज मंगलवार 15 तारीख सितंबर प्रिंसेस डाक है। चलिए फिल्म हमराज, उसी फिल्म का गाना की ओर हम आपको ले चलते हैं और बारन द्रेख्त शहर से तार किया है प्रेमनाथ ने तार किया है और हमारा प्रोग्राम इस वक्त सुनते हैं और खबर किया है तार पर कि हमेशा और हमेशा प्रोग्राम को फॉलो कर रहे हैं लेकिन बिजी रहता है बैकग्राउंड पर। रेडियो SBS का प्रोग्राम हमेशा सुनते हैं। तो बारन द्रेख्त शहर का रहने वाला प्रेमनाथ ये गाना मांग किया है महेंद्र कपूर जी की आवाज में हमरास

हमरा फिल्म का गीत पेश की गए महेंद्र कपूर की आवाज में नीले गगन की टले। खासतौर पर फिल्म हमराज में सुनील दत्त, राजकुमार और मुमताज काम किया है और इसी तरह से ये गाना को मांग करने वाला था बारंद्रेख्त शहर का रहने वाला प्रेमनाथ का मांगी हुई गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। शुभ दिन पेश किया जा रहा है और रेडियो SBS का प्रोग्राम इसी तरह से सुनते ही रहना। ऐसे मालूम होते हैं कि ज्यादा से ज्यादा सुनने वालों रोटरडम, डेन हाग के आसपास की शहरों में यानी कि प्रोविंसी साउथ होलैंड से गाना मांग कर रहे हैं। वहां पर इन दिनों काफी सुनने वालों होते हैं जो रेडियो SBS का प्रोग्राम को सुनते हैं। खासतौर पर हमारा प्रोग्राम जो DAB प्लस रेडियो की जरिए मोटरकार में और घरों में सुनाई देता है प्रोविंसी साउथ होलैंड में। और बहुत से सुनने वालों हमेशा तार पर और रेडियो SBS का ऐप पर ये खबर कर रहे हैं कि गाने जो है साउंड जो है अच्छी क्वालिटी साउंड में बस सुनाई देता है रेडियो SBS के जरिए। सभी को शुक्रिया, धन्यवाद। हम सभी हमेशा कोशिश करते रहते हैं अच्छी क्वालिटी साउंड में ये प्रोग्राम पेश करने के लिए और अच्छी क्वालिटी साउंड में हर एक गाने पेश करने के लिए। चले प्रोग्राम में फिल्म ठोकर की ओर हम आपको ले चलते हैं। फिल्म ठोकर का गीत आप सुनेंगे मोहम्मद रफी की आवाज में और सुतमेर शहर की रहने वाली है नलिनी भी हमारा प्रोग्राम हमेशा सुनते हैं और आज के प्रोग्राम में ये गाना को मांग किया है। फिल्म का नाम ठोकर, अपनी आंखों में बसाकर।

मोहम्मद रफी की आवाज में फिल्म ठोकर, उसी फिल्म का गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई। खासतौर पर बलदेव भूसा का एक्टिंग किया हुआ गाना मोहम्मद रफी की आवाज में पेश की गई। और सुतमेर शहर के रहने वाली नलिनी के मांगे हुए गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई। आसरो मीठे नलिनी गाना आपने सुना और बेहद पसंद किया है। शुभ दिन पेश किया जा रहा है और रेडियो SBS का प्रोग्राम जरूर और जरूर सुनते ही रहना। आहिस्ता आहिस्ता पुरानी फिल्मी संगीतों का प्रोग्राम जो है सुन वालों खत्म समाप्त होने पर आ रहा है। एक गाना की ओर हम आपको ले चलेंगे, मुकेश और लता जी की आवाज में जो पेश होगा पत्थर के सनम। फिल्म का नाम पत्थर के सनम, उसी फिल्म का गाना पेश होगा। और आज के प्रोग्राम में एक आखिरी पुरानी फिल्म का गीत पेश किया जा रहा है और एक आखिरी सुनने वालों की मांगी हुई गाना बढ़ चुके हैं नीवखैन शहर की ओर और वहां से तार किया है हैंक भी हमारा प्रोग्राम नीवखैन शहर के अंदर में DAB प्लस रेडियो के जरिए प्रोग्राम को सुनते हैं और खबर किया है साफ और सुंदर आवाज में सुनाई देता है। तो हैंक एक गाना मांग किया है नीवखैन शहर का रहने वाला जो है फिल्म पत्थर के सनम, मुकेश एंड लता मंगेशकर, मनोज कुमार का फिल्म है, फिल्म पत्थर के सनम। गाना का बोल है महबूब मेरे।

0: पत्थर की सनम, उसी फिल्म का गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में मुकेश और लता जी की आवाज में गाना भी आपने सुना। मनोज कुमार का एक्टिंग किया हुआ फिल्म का गीत पेश की गई। दीबखाइन शहर का रहने वाला हैंक ने तार किया और ये खूबसूरत प्यार भरी गाना आज की प्रोग्राम में मांग किया। आखिरी सुनने वालों की मांगी हुई गाना और आखिरी पुरानी फिल्म का गीत इस पुरानी फिल्मी संगीतों का प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। आशा उम्मीद है कि ये प्रोग्राम आप सभी ने सुना और काफी पसंद किया है। और आपको मालूम होना चाहिए कि हर सुबह ये प्रोग्राम पेश किया जा रहा है 9 बजे से लेकर के और 11 बजे तक। सुन वालों, आपको मालूम होगा कि रविवार 15 तारीख नवंबर उदित नारायण और अतिथिया नारायण का लाइव कॉन्सर्ट पेश होने वाले है रोटरडम आहोई में, रोटरडम आहोई RTM स्टेज में। अपना टिकट जो है जरूर आप जल्द से जल्द जाकर खरीदिए iStripTickets.com वेबसाइट पर। टिकट इन दिनों काफी जोर तोर से बिक रहा है और खानी सातोर भी खबर किया है टिकट काफी जोर टोर से बिक रहा है। तो अपना टिकट के लिए iStripTickets.com वेबसाइट पर आप जाइए और जल्द से जल्द अपना टिकट खरीदिए और हम सभी मिलकर देखेंगे रविवार 15 तारीख नवंबर उदित नारायण और अतिथिया नारायण, मतलब हुआ बाप और बेटे का कमाल हम सभी देखेंगे स्टेज पर, पोडियम पर। हम आपको ले चलेंगे रिक्लाम न्यूज मौसमी समाचार और फरकीर से इंफॉर्मेशन की ओर। उसके बाद तुरंत हम आपसे फिर मिलते हैं और भी खूबसूरत गाने लेकर के, नगमे लेकर के।
1: En nu reclame, nieuws en het weerbericht op Radio SBS.

0: Er schijnt de zon. Vanmiddag wordt het tussen 20 graden aan de noordwestkust en 28 in het zuidoosten. Tot zover het Radio Nieuws op Radio SBS.
1: Nu de verkeersinformatie op Radio SBS.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment loopt het verkeer vooral vertraging op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Tussen Hoofddorp Zuid en Schiphol is je vertraging 5 tot 10 minuten. Op de A16 Rotterdam-Breda is een ongeluk gebeurd. 3 rijstroken zijn dicht tussen knooppunt Ridderkerk en Zwijndrecht. Het rijdt langzaam 6 kilometer met 15 minuten vertraging. Ook op de A28 richting Amersfoort is een ongeluk gebeurd. Vanuit Zwolle betekent dat tussen Nijkerk en knooppunt Hoevelaken een kwartier file rijden.
1: Tot zover de verkeersinformatie op Radio SBS. Luister Radio SBS in Midden-Nederland en in Zuid-Holland en ver daarbuiten in je auto en thuis op je DAB Plus radio.
3: Ja, dat was het programma met 10 minuten. Wij dit hoe zoeken hem. Har ik ghante per nieuws, mausmi, samachar aur verkeers informatie aapko diya ja raha hai. Radio SBS ki zariye. Ek baar phir se aap sabhi sunne walon ko welcome. Suna hai aap reklama ki zariye ki छोटे मियां बड़े मियां कॉन्सर्ट पेश होने वाले हैं सोन द 15 नवंबर और वो भी रोटरडम आहोई में. टिकट जिस तरह से मैंने आपको खबर किया और खानिसात सी और खानिसात और हमें भी खबर किया है कि टिकट इन दिनों काफी जोर तोर से बिक रहा है. ख्याल से बहुत जल्द आउटफरकोख्त होगा. उदित नारायण एन अतिथिया नारायण, बड़े मियां छोटे मियां, बाप और बेटे का कमाल, रोटरडम आहोई वहां पर होएगा. तो चले उदित नारायण की आवाज में गाना पेश किया जा रहा है. साथ में होगा अलका, फिल्म का नाम कसूर और गाना कबूल है जिंदगी बन गए हो तुम. एक मोई नंबर, बड़ी ही खूबसूरत गाना है. हाँ, जिंदगी बन गए हो तुम. उदित नारायण एंड अलका, द मूवी कसूर, फिल्म जो 2001 में रिलीज किया गया है. चले मिलकर गाना को सुनते हैं और साथ में मिलकर गुनगुनाते हैं.

रेडियो SBS का प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है, द बेस्ट बॉलीवुड हिट्स रेडियो SBS की सरिये कुमार सानू एंड अलीशा चिनोय। अब की बार हम आपको ले चलते हैं फिल्म का नाम गुंडा राज।

Alicia की आवाज में गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई फिल्म गुंडाराज, उसी फिल्म का गीत अभी आपने सुना जो आज के प्रोग्राम में पेश की गई। हर एक काम काज के लिए रेडियो SBS से आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, तार द्वारा, मेल द्वारा या तो हमारा रेडियो SBS का एप द्वारा। 24 पर दख रेडियो SBS का दफ्तर कंतूर का टेलीफोन नंबर पर एक बार होता है, और साथ ही साथ हमारा मेल रेडियो SBS का वेबसाइट की जरिए, और रेडियो SBS का वेबसाइट की जरिए हमारा रेडियो SBS का एप भी फीरन ट्विंटर पर अखबार एक बार होता है। फरमाइश हुआ आने वाले दिनों के प्रोग्राम में फरमाइश देना है तो वक्त पर समय पर अपना फरमाइश दीजिए। 5 यूरो पर फरमाइश दाम रखा गया है, 5 यूरो पर फरमाइश। और आपकी तमाम रिक्लाम खबरें हुआ सस्ती दामों में जरूर एक बार इंफॉर्मेशन लीजिए। एक गाना की ओर हम आपको ले चलते हैं प्रोग्राम में जो पेश किया जा रहा है, विजय पथ फिल्म का नाम, अब की बार कुमार सानू और अलका होगा।

जिनकी आवाज में ये गाना बस पेश की गई, विजय भट्ट फिल्म का नाम, उसी फिल्म से ये गीत अभी आपने सुना जो आज के प्रोग्राम में पेश की गई है। 6 मिनट बाकी है प्रोग्राम में, 11:30 बजे में जिस तरह से मैंने आपको खबर किया, फरमाइश हुआ इश्तिहारे, जरूरी खबरें, रिक्लाम, मृत्यु समाचार या मौत की खबर के लिए हर एक इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं तार द्वारा, मेल द्वारा और रेडियो SBS का ऐप के जरिए। प्रोग्राम में एक प्यार भरी गीत पेश होगा,

आहिस्ता आहिस्ता काफी गर्मी होने लगा है, धूप ही धूप का मौसम, और खूबसूरत गाना आपके लिए रेडियो SBS के जरिए द बेस्ट बॉलीवुड हिट्स सिर्फ रेडियो SBS पर, संगीत भरी स्टेशन।

6 मिनट गुजर चुके हैं और रेडियो SBS का प्रोग्राम आप सुन रहे हैं। आज की सुबह की ये प्रोग्राम में खूबसूरत नख्मे, खूबसूरत गाने आप सभी के लिए पेश किया जा रहा है। सुतमेर शहर के अंदर में नेहा भी हमारा प्रोग्राम सुनते हैं और ये गाना सुनना चाहते हैं, दिल है के मानता नहीं, अनुराधा पोर्टवल प्रोग्राम में।

फिल्म दिल है के मानता नहीं। अनुराधा पोटवाल जी की आवाज में ये गाना पेश की गई, ओ मेरे सपनों के सौदागर। म्यूजिक बेस्ट रेडियो स्टेशन रेडियो SBS, द बेस्ट बॉलीवुड संगीत लेकर के, द बेस्ट बॉलीवुड हिट्स लेकर के। दिल है के मानता नहीं उसी फिल्म का गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी सुनने वालों की सेवा में। और खासतौर पर सुतमेर शहर के अंदर में हमारा प्रोग्राम नेहा सुनते हैं और नेहा ये गाना को सुनना चाहते थे आज की प्रोग्राम में। वेबसाइट होता है radio.sbs.nl, उसी वेबसाइट के जरिए अपना मोबाइल फोन के जरिए मोबाइल टेलीफोन के जरिए दुनिया की कोने कोने में रेडियो SBS का प्रोग्राम को आप सुन सकते हैं सभी इंटरनेट रेडियो के जरिए। और डे अबे प्लस रेडियो के जरिए मिडल नीदरलैंड में और प्रोविंस साउथ होलैंड में ये प्रोग्राम आप सुन सकते हैं। कविता कृष्णमूर्ति और शान प्रोग्राम में अब की बार फिल्म का नाम होगा दिल है तुम्हारा। आज

बांस में दिल है तुम्हारा, फिल्म का नाम दिल है तुम्हारा, गाना जो आज की ये प्रोग्राम में पेश की गई है। आहिस्ता आहिस्ता हम सभी दोपहर की ओर जा रहे हैं, काफी सुनने वालों हैं जो तैयारियां करेंगे अभी कुछ खाने के लिए, कुछ पीने के लिए। चलिए प्रोग्राम में कुमार सानू की आवाज में एक गाना पेश किया जा रहा है। हम आपको ले चलते हैं फिल्म सनम तेरी कसम।

रेडियो स्टेशन रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। सुनने वालों, 15 तारीख नवंबर रविवार उदित नारायण और आदित्य नारायण लाइव इन कॉन्सर्ट, बड़े मियां छोटे मियां कॉन्सर्ट पेश होने वाले हैं। रागा इवेंट्स ला रहा है रोटरडम आहुई में। टिकट आई

रेडियो SBS की जरिए शंकर महादेवन और साथियों की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। तमाम इन्फॉर्मेशन के लिए इन्फो के लिए टेलीफोन नंबर है 0325656560। कुमार सानू एन अलका की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है।

रेडियो SBS की जरिए कुमार सानू और अलका जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई। सभी सुनने वालों की सेवा में रेडियो SBS का खास प्रोग्राम आप सुन रहे हैं। सोनू निगम एंड श्रेया घोषाल।

भाई आवास में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में आसरा उम्मीद है कि ये गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है। तो चले मिलकर अरिजीत सिंह की आवाज

रेडियो SBS के जरिए अरिजीत सिंह की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। आज और उम्मीद है कि गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया रेडियो SBS के जरिए जो पेश की गई है। एक गाना की ओर हम आपको ले चलेंगे कविता कृष्णमूर्ति और कुमार सानू जी की आवाज में।

में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है, वेबसाइट होता है radio.sbs.nl। चलिए फिल्म आवारापन जुजान की आवाज में एक गाना पेश किया जा रहा है। अब आप गोली चल

पेश की गई रेडियो SBS की जरिए भी आपने सुना। मैं हूं आपका खिदमत गुजार रबीन और रेडियो SBS का प्रोग्राम जरूर है और जरूर सुनते ही रहना। सुनने वालों हर एक इन पर बातचीत के लिए टेलीफोन नंबर है 0832656।

प्यारा मित्र की आवाज में रेडियो SBS के जरिए ये गाना भी आपने सुना आज के प्रोग्राम में जो पेश की गए।

सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है। चलिए अब की बार तुलसी कुमार NKK की आवाज में गाना पेश किया जा रहा है। तुलसी कुमार NKK प्रोग्राम में।

तुलसी कुमार एन के की आवाज में गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई रेडी फिल्म का नाम, उसी फिल्म का गीत अभी आपने सुना आज की प्रोग्राम में। चलिए प्रोग्राम में हम आपको ले चलते हैं कुमार सानू की आवाज में गाना, और अब की बार फिल्म का नाम होगा इंडियन बाबू।

फिल्म का गीत बस प्रोग्राम में पेश की गई। रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है सभी कामों का आज के लिए। टेलीफोन नंबर है 0302-65-65-60। सोनू निगम एंड अलका।

पेश की गई सभी सुनने वालों की सेवा में रेडियो SBS के जरिए अभी आपने सुना कुमार सानू और अलका की आवाज में ये गाना

पद्मश्री मोहम्मद रफी की आवाज में ये गाना पेश की गई फिल्म का नाम था आरती। उसी फिल्म का गीत अभी आपने सुना आज की प्रोग्राम में जो पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चले फिल्म हम किसी से कम नहीं उसी फिल्म का एक गाना पेश किया जा रहा है मोहम्मद रफी और सुषमा सरस्ता की आवाज में।

फिल्म का नाम हम किसी से कम नहीं, उसी फिल्म का गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। और प्रोग्राम को जरूर सुनते ही रहना, हर एक को खबर कीजिए रेडियो SBS के बारे में।

खूबसूरत सा गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए प्रोग्राम में अब की बार आशा भोसले एन मोहम्मद रफी की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है।

मोहम्मद रफी और आशा जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। सुनने वालों स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 03-262-66-66-11। महेंद्र कपूर प्रोग्राम में।

महेंद्र कपूर की आवाज में गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चले प्रोग्राम में किशोर एन लता जी की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है।

0: और रेडियो SBS के जरिए वही गाने पेश किया जा रहा है जो आप सुनना चाहेंगे, जो आप पसंद करते हैं। मुकेश और लता जी की आवाज में ये खूबसूरत सा गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। आश्रो में गाना आप सभी ने सुना और काफी पसंद किया है। एड फिल्म पत्थर के सनम, उसी फिल्म का गीत बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। संगीत भरी स्टेशन रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है और वो भी शहर यूट्रेख से। तो चले प्रोग्राम में अब की बार गाना जो आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है रेडियो SBS के जरिए, हम आपको ले चलते हैं एक और काफी खूबसूरत गाना की ओर जो आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है और वो भी लता मंगेशकर, लता जी की आवाज में एक और खूबसूरत गाना बस प्रोग्राम में, एड फिल्म नाइट इन लंदन।
1: राइट द हिट्स, वेरी एफ हाउस, दिस इज रेडियो SBS।

कमन गीसकर की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई फिल्म का नाम था नाइट इन लंदन। उसी फिल्म का गीत अभी आपने सुना जो आज के प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। चले प्रोग्राम में आशा भोसले एंड एड दे बर्बन यानी कि राहुल देव बर्बन की आवाज में गाना पेश किया जा रहा है। The Nightingale of Asia, आशा भोसले और एडे बर्मन राहुल देव बर्मन की आवाज में एक गाना पेश किया जा रहा है पिया तू अब तो आजा।

रेडियो SBS के जरिए जानब उस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में आशा भोसले और एर डे बर्डमन की आवाज में। चलिए प्रोग्राम में फिल्म जिद्दी, उसी फिल्म का एक गाना बस प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। सुनने वालों, आपको खबर किया जा रहा है हर एक काम काज के लिए। रेडियो SBS का टेलीफोन नंबर है 0325656560। इसी तारकी नंबर पर, टेलीफोन नंबर पर हमेशा आप तार कर सकते हैं। हम सभी 24 घंटे आप सभी के लिए बराबर होते हैं हर एक कामों काज के लिए, जब भी आप इन्फॉर्मेशन लेना चाहेंगे। तो चलिए प्रोग्राम में हम आपको ले चलते हैं मोहम्मद रफी और आशा जी की ओर, फिल्म का नाम जिद्दी।

0: मैं चलता हूँ, मुझे जाने दो, मैं चलता
1: हूँ। सुन बलो, हमारा आज का प्रोग्राम बस यहीं से खत्म समाप्त होने पर आ गए हैं। हमारा आज का प्रोग्राम जो है सुनने के लिए लाख लाख शुक्रिया, धन्यवाद। आसरा मीठे प्रोग्राम सुनकर और काफी पसंद किया है। मैं आपका खिदमत गुजार रबीन। हर एक इन्फॉर्मेशन के लिए, इन्फो के लिए टेलीफोन नंबर है 0352656560। बस आप सभी सुनने वालों से हम फिर मिलेंगे।

0: हेलो नमस्ते और आदाब, मैं हूँ आपकी आरजे अंशली क्रमलाल, जो आपका तहे दिल से स्वागत करती है प्रोग्राम गीतों के लहर में। हेलो अलमाल, दिस इज यू आर जे अंशली क्रमलाल, दी उफा हार्ट वेलकम हेट इन इट प्रोग्राम गीतों के लहर। विल तू रिएक्शन कर दो टाइट, सर्फ नाद वेबसाइट www.radiosbs.nl ऑफ बेल नाद स्टूडियो मेट 032-62-66-11। Voor alle andere info kunt u altijd bellen met 030-265-6560. Dan gaan we naar het eerste liedje van vandaag. En dat is...
1: Hey

हर दिल जो प्यार करेगा फिल्म से आपने सुना टाइटल सॉन्ग अलका याचिक और उदित नारायण की आवाज़ में, और अब हम सुनते हैं स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 से मुंबई दिल्ली की कुड़िया।

चली आई चली आई इज द फिल्म मैं प्रेम की दीवानी हूँ खुजान दूर चित्राएं के एंड द फिल्म काटे कोम्त इश्क समंदर.

नमस्ते बहनों और भाइयों, बड़े ही कम शब्दों में आपको सुनाना चाहता हूँ उस साल का लोकप्रिय गीत सलाम ले जाता हुआ उड़न खटोला और बीन बजाती हुई नागिन।

दिल ने ये कहा है दिल से, मोहब्बत हो गई है तुमसे। इस खसम दूर सोनू निगम एंड अल कयाच ने कैन क्वाम आउट द फिल्म धड़कन। आउट द फिल्म बेल बॉटम कम दा खसम दूर प्रतिभा सिंह खैर मंग दे।

तुम क्या जानो दिल करता तुमसे कितना प्यार वास आए द फिल्म आशिक कैन आए द फिल्म हम हो गए आपके इस het volgend liedje in het programma Geet om Kilher via Radio SBS. Gezongen door Kumar Sanu en Elke Yachnik komt. De titelsong van de film Hum Ho Gaye Aapke.

अब तो है तुमसे हर खुशी अपनी, ये चाहे द फिल्म अभिमान हसन उधर लता मंगेशकर। हाँ उदा फेरदर मैथ अ द फिल्म बॉम्बे, कहना ही क्या ये नैनिक अनजान से जो मिले। गुमसुम।

फिल्म मिम्मी से आपने सुना श्रेया घोषाल और एआर रहमान की आवाज में परम सुंदरी। और अब आप सुनिए रहना है तेरे दिल में से, सच कह रहा है।

एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा का टाइटल सॉन्ग आपने सुना दर्शन रावल और रोचा कोहली की आवाज में। और अब आप सुनिए के और महालक्ष्मी अय्यर की आवाज में फिल्म प्यार में कभी कभी से। दिल से मेरे दूर न जाना तुम मेरी खुशी।

जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की आवाज़ में आपने सुना बेहतरीन गाना फिल्म भावना से। मेरे दिल में तू ही तू है, दिल की दबा क्या करूं, दिल भी तू है जहाँ भी तू है, तुझ पे फिदा क्या करूं। अगला गाना है फिल्म 14 फेरे से। फिल्म 14 फेरे से आप सुनिए गोरी चढ़के।

दिल में सनम की सूरत, आँखों में रोशनी है, मेरी खुदा मुझे तो एक और जिंदगी दे। इस खुशाम दौर कुमार सानू एंड अलका याचनिक एंड क्वामा द फिल्म फिर तेरी कहानी याद आई। En uit de film Ruhi komt gezongen door Sachin Jigar, Aziz Kaur en Divya Kumar. Panghat.

0: नजर से।
1: मुकेश जी और लता मंगेशकर की आवाज में आपने सुना फिल्म अनारी से, दिल की नजर से। और अब आप सुनिए पुरवैया शंकर माधवन की आवाज में फिल्म तूफान से।

कुणाल गांजावाला की आवाज में आपने सुना फिल्म क्यूंकी से। दिल कह रहा है तेरी धड़कनों को छू लूं, तेरा जिस्म ओढ़ लूं। और अब आप सुनिए नेहा कक्कर, मनोज म्यूजिक और हर्बी की आवाज में फिल्म गुड न्यूज से, लाल घाघरा।

दिलबर मेरे कब तक मुझे यूं ऐसे ही तड़पाओगे, वॉज आउट द फिल्म सत्य पे सत्ता फन अमिताभ बच्चन एंड हेमा मालिनी. Gaan we verder met uit de film Love Yatri. In het programma Gitonkel Her via Radio SBS is gezongen door Atif Aslam Terahua.

हाय, क्या थे वो दिन। बस द फिल्म छिछोरे, द फिल्म फन सुशांत सिंह राजपूत सामा में श्रद्धा कपूर, दिलीदेश खजांदोर तुषार जोशी, खजांदोर अलका याचिक कम तुत फोहत लीजिए इन प्रोग्राम गीतों के लहर। द फिल्म तुमको ना भूल पाएंगे, कौन क्या हुआ तुझे।